0: मुताबिक पासदारा ने इनकलाब ने कुवैत में वाक़ दो फजाई अड्डों को भी निशाना बनाया है। ये दावे ईरान और अमरीका के दरमियान खित्ते भर में बढ़ते हुए जवाबी हमलों के सिलसिलों के दौरान सामने आए हैं। बयान में कहा गया है कि यह ऑपरेशन गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी के बाद शनाख्त किए गए अहदाफ के खिलाफ किया गया है। ईरान पासदारान इनकलाब ने एक अलग बयान में कहा है कि आबनाए हुर्मस में इसकी बहरी कार्रवाई का मकसद दो ऐसे जहाज थे जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए, बहरी जहाज रानी के कवायद की खिलाफ वर्जी की और बहरी सलामती के लिए खतरा पैदा किया था।
1: नीम सरकारी महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने इत्तला दी है कि मुल्की फिजाई दिफाई निज़ाम ने मुल्क के जनूबी शहर बंदर अब्बास के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। महर न्यूज़ ने फौज के बयान के हवाले से बताया कि ईरान के जनूब मशरक में तैनात फिजाई दिफाई फोर्सेज ने हाजी आबाद के करीब बंदर अब्बास की फिजाई हदूद में एक जारहाना लूकस किस्म के ड्रोन का पता लगाकर उसे रोका और तबाह कर दिया। फौज ने वजाहत की है कि यह कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब फिजाई दिफाई यूनिट्स दुश्मन के हमलों का जवाब दे रहे थे। ड्रोन गिराए जाने की यह खबर अमरीका की जानब से ईरान भर में फौजी और बुनियादी ढांचे के अहदाफ बशमूल बुशहर, खुजिस्तान और हुरमुजगान के सूबों में वाक़ तनसीबात और तेहरान और मशहद को मिलाने वाले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की एक नई लहर शुरू करने के चंद घंटे बाद सामने आई है। तेहरान इंतजामिया ने वाशिंगटन पर पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले 17 जून के मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है और बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए मिज़ाइल और ड्रोन हमला करने का ऐलान किया है। ईरानी उमूर ख़ारिजा ने इससे कबल अपने एक बयान में हमसाया ममालिक को खबरदार किया था कि वह अपनी सरजमीं या तनसीबात को अमरीका या दीगर फरीकैन की जानब से ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें।
0: ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के इस बयान पर सख्त रद्देअमल का इजहार किया है जिसमें उन्होंने अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के खिलाफ ईरान के इकदामात पर तशवीश जाहिर की थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी करदा बयान में ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ किया है कि ईरान सिर्फ अपने दिफा के जायज़ हक का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के इस मौक़िफ़ को गैर ज़िम्मेदार और गैर मुनसिफाना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी तर्जुमार का कहना था कि ये वाकयात कोई बाकायदा फौजी तसादम नहीं है बल्कि ये अमरीका और इसराइल की जानब से शुरू की गई फौजी जारहियत का तसलसल है। इस्माइल बकाई ने मजीद दावा किया है कि खलीज फारस में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डों पर किए जाने वाले हमले बैनुल अक़वामी कवानीन के दायरे के मुताबिक हैं। दूसरी जानब अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने खित्ते में बढ़ती हुई संगीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकैन से अपील की थी कि वो तमाम हमले फौरी तौर पर रोक दें।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीका ईरान कशीदगी के दोबारा शिदत इख्तियार करने और मशरक़ वस्ती में जहाज़ों पर हमलों के बायस सिक्योरिटी खदशात में इजाफे के बाद गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद गुज़श्ता 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। केपलर बहरी ट्रैफिक के आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि जहाज़ों की निगरानी के आदाद शुमार के मुताबिक इतवार के रोज़ सिर्फ 6 जहाज़ आबनाए हुर्मुज से गुजरे हैं। आबनाए हुर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों में ह्यूमैनिटी नामी इंतहाई बड़ा खाम तेल बरदार टैंकर VLCC भी शामिल था, जो ईरान का 20 लाख बैरल खाम तेल ले जा रहा था। एक और कैप्टन आंद्रयास नामी टैंकर तकरीबन 5 लाख बैरल कुवैती पेट्रोलियम मसनूआत लेकर रवाना हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक खाम तेल की भराई के लिए 3 खाली टैंकर खलीज में दाखिल हुए, ताहम ज़्यादातर जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज से गुजरते वक्त अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे। जहाज़ों की निगरानी के आदाद शुमार के मुताबिक हफ्ते के अख्ताम पर आबनाए हुर्मुज में किसी भी LNG बरदार जहाज़ की आमद रिकॉर्ड नहीं की गई। कैपलर के आदाद शुमार के मुताबिक 10 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक के ज़ेर इंतज़ाम सिर्फ 1 टैंकर आबनाए हुर्मुज से निकला, जो इस वक्त भारत की दहीज बंदरगाह की जनब रवाना है।
2: शाम के सदर अहमद अल-शरा ने नौ मुंतखब पार्लियामेंट के आगाज को, जो 2024 में बशारुल असद की आमरीत के खात्मे के बाद पहली बार बुलाई गई थी, एक नायाब वाकया करार दिया है। पार्लियामानी अराकीन से खिताब करते हुए शरा ने जिम्मेदारी और अहलियत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो बातचीत को मजबूत करें, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें और रियासती इदारों की हिफाजत करें। नई 210 रुकनी अवामी असम्बली में सदर की तरफ से मुकर्रर करदा 70 अराकीन शामिल हैं, जिनमें से 15 खवातीन हैं। पार्लियामानी कवानीन का मुसवदा तैयार

ज़ामिन फ़न आपकी ज़िंदगी में कितनी जगह रखता है? यकीनन इस सवाल का कतई जवाब देना मुमकिन नहीं। मुसव्विरी, मुजस्मा साजी, शायरी, मौसीकी, बैले, थिएटर, सिनेमा, ये सब हमारी ज़िंदगी में एक जगह रखते हैं, शायद कम या ज़्यादा। लेकिन ये एक हकीकत है कि फ़न हमेशा लोगों के लिए

मौजूद रहा है। हमारे आबा अजदाद ने 40,000 साल कबल गार की दीवारों पर जो तस्वीरें खींची थीं, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ऐसी काबिलियत के साथ वो मुसव्वरी, जो आर्ट के मुअर्रखीन को भी हैरान कर देती हैं, इस बात का इशारा है कि लोग फ़न से ऐसे वक्त में भी जुड़े हुए थे जब कोई लफ्ज़ नहीं थे। गोबी की तपे में जानवरों की इमदाद के साथ बड़े ब्लॉक्स, जबकि चाताली हुयुक में घरों को पीले, सुर्ख और सियाह रंगों में पेंटिंग से सजाया गया था। अनातोलिया के हर इलाके में पाए जाने वाले बर्तन और जेवरात अपनी उम्दा कारीगरी से तवज्जो मबजूल कराते हैं। ये सब फन के ऐसे काम हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये बेजा नहीं है कि जर्मन फलसफी हेगल फनकारों को इंसानियत के अव्वलीन असातज़ा के तौर पर बयान करता है। इस जुग्राफिया में हमारे फनकाराना आबा और अजदाद की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। आज हम आपको मुजस्मा साजी की उस वर्कशॉप के बारे में बताना चाहेंगे जो अनातोलिया की कदीम तहजीब हिटिटस से हमारे पास रह गई थी। हटाइटस अनातोलिया की 5,000 साल कदीम तहजीब। ये न सिर्फ अनातोलिया की बल्कि दुनिया की तारीख की अहम तरीन तहजीबों में से एक है। वो यूरोप और मशरक़ वस्ती के अफसानों, ज़बान, मज़हब, सियासत और तिजारत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते थे और कानून और रियासती तंजीम जैसे बहुत से दूसरे मसाइल में अलमबरदार बन जाते थे। हथीती बारूदी सुरंगों पर कार्रवाई करते थे, ख़ास तौर पर आला मयार की लोहे की मसनूआत और हथियारों की टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त रखते थे। वो आर्ट में भी नई ज़मीन को तोड़ते हैं। वो सकाफत जिसने अनातोलिया में पहली बार यादगार फन तामीर में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया और पहली बार मुजस्मा साजी की वर्कशॉप कायम की, वो भी हतीतियों ही की थी। जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, वो यसमिक मुजस्मा साजी की वर्कशॉप है जो कि ज़िला गाजियान्तेप में वाक़ है। ये कदीम करीब मशरक़ में अब तक दरियाफ्त होने वाली मुजस्मा साजी की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। इस वजह से इसे एक मुनफरिद आसार कदीमा के तौर पर बयान किया जाता है। ज़ियुग्मा के कदीम शहर की तरह यसमिक यूनेस्को के आर्जी आलमी सकाफती वरसे की फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि इसकी एक आला आलमगीरी कदर भी है। यसमिक की तारीफ एक मुजस्मा साजी के स्कूल के तौर पर की गई है जो दुनिया में मुनफरिद है। माहरीन का कहना है कि उनका उसलूब, जिसे मशरकियत के नाम से जाना जाता है, वक्त के साथ साथ मगरब में फैल गया और यूनानी फन को भी मुतासर किया। यहाँ ज़्यादातर सतहों पर 500 से ज़्यादा पत्थर के मुजस्मे हैं। जो मुजस्मे ज़मीन से निकलते नज़र आते हैं, वो वाकई मुतासर कुन हैं। यसमिक में जो आज एक खुला हुआ म्यूज़ियम है, गेट लाइंस, स्फिंक्स और परों वाले शेरों के खाके मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। पहाड़ी खुदा की रिलीफ्स, जंगी मंजर से मुतालिक रिलीफ्स और अमानोस पहाड़ों की नुमाइंदगी करने वाले फन तामीर के टुकड़े 1,000 साल बाद इनके कुदरती माहौल में नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं। यह समय हमें दिखाता है कि वक्त उड़ता है, नस्लें और सकाफतें बदलती रहती हैं, लेकिन फन का मिजाज मुस्तकिल रहता है। पहले तो माहिरीन का ख्याल था कि यसमिक में मुजस्मे इर्द गिर्द की बस्तियों को भेजने के लिए बनाए गए थे। जैसे जैसे तहकीक गहरी होती गई तो यह बात सामने आई कि इस वर्कशॉप में मौजूद मुजस्मे इस शहर के लिए ही तराशे गए थे, जिनकी तामीर इसी जगह शुरू हुई थी। क्योंकि ये तय पाया था कि यसमिक में ना सिर्फ मुजस्मे बल्कि तामीराती अनासर भी बनाए गए थे। इस बारे में अनमोल मालूमात पेश करता है कि पत्थर के ब्लॉक्स कैसे काटे गए, मुजस्मे के खाके कैसे तैयार और मुकम्मल किए गए। कान से शुरू होकर यसमिक को दुनिया में एक मुनफरिद मकाम के तौर पर बयान किया गया है, जहां हर एक कायनात को एक एक करके देखा जा सकता है, जिसे हम उस दौर के मुजस्मा साजी के फन की तरक्की को भी समझ सकते हैं। ये सब एक इस बात का इशारा है कि किस तरह हतीती फन के साथ जुड़े हुए थे। मुजस्मों की इतनी बड़ी तादाद के लिए बहुत से मुजस्मा साजों का होना ज़रूरी है, और ये एक बार फिर इस अहमियत को जाहिर करता है जो हतीतियों ने फन को दी थी। यह समय अपने बहुत से मुजस्मों के साथ लोगों को एक पुरसरार और मुतासिर कुन माहौल में मदू करता है। वो मुजस्मे

जो माजी की गवाही देते हैं, मुस्तकबिल पर निगाहें डालकर अपने आने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप उनकी खामोशी को सुनेंगे तो आप उन्हें कदीम ज़माने की अनोखी कहानी सुनाते हुए पाएंगे। सामिन, आज हमने एक दूर दराज की कहानी सुनाई, अतिथियों के आर्ट सेंटर और मुजस्मा साजी की वर्कशॉप USMA के बारे में आपको बताया। नस्ली खान देर मैन जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।